0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, सोफिया जमशेद और वसीमा आबिद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामेईन को आदाब। जी सामेईन, कहिए कैसे हैं आप?
1: उम्मीद है सब मज़े में होंगे। ईद उल अज़हा थी, अगरचे अब तकरीबन 10-12 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सब सामीन को गुज़िश्ता ईद उल अज़हा मुबारक और फरीज़ हज अदा करने वाले तमाम असहाब को भी दिली मुबारकबाद।
0: बकरीद कुर्बानी का गोश्त बनाने, खाने और बांटने का त्यौहार है। वैसे तो दुनिया के किसी खत्ते में कहीं भी कोई भी रिवायती त्यौहार हो, वो रिवायती खानों के बगैर नामुकम्मल रहता है, लेकिन ख़ास तौर पर बकरीद का तसव्वुर ही खुर्दनोश से जुड़ा है।
2: सूफिया, जापानी सकाफत के खाने पकाने से वाबस्ता एक पहलू का जिक्र करूं?
1: खाने पीने के जिक्र से ही तखय्युल में जायकेदार खाने आने लगे।
0: मुंह में पानी तो नहीं आया ना, क्योंकि वसीमा कोई डिश तो लाई नहीं है, सिर्फ जिक्र पर ही तरखा रही हैं। चलिए इस खास पहलू का जिक्र कर ही डालिए आप।
2: अरे नहीं, अब लाऊंगी, आइंदा जरूर लाऊंगी। वैसे सामीन आपको बताते चलें कि जापान में हर साल जून का महीना गजाइत से मुतलिक आगाही बढ़ाने के लिए मुख्तस किया गया है। इसकी मखसूस इस्तिलाह है शोकु इकु।
0: शोकु इकु में शोक से मुराद खाना है और इकु आगाही को कहते हैं।
2: और इस शोकु इकु से मुराद लोगों को, खसूसन बच्चों को, खुराक मुंतखब करने, गजाइत के लिहाज से मुतवाजन खाने और खुराक का ज़ियार रोकने की आगही देना है। सामिन, ये लफ्ज़ जापान में 2005 में खुराक की तालीम के बुनियादी कानून के नफाज के साथ आम हुआ।
1: खाने पीने की सेहतमंद आदात तवाना मुआशरे की बुनियादी इकाई हैं। पाक हिंद में दस्तरखान के आदाब पर बड़ी तवज्जो दी जाती है, लेकिन इसके लिए खास तौर पर कानून साजी की जरूरत क्यों पड़ी?
0: खलील साहब, पहले जमाने में जापान में भी ऐसे ही था। खाने के आदाब घराने से रोजमर्रा की तरबियत से जुड़े हुए थे। तहम सुना है कि 20वीं सदी के बाद जापान की तेज माशी तरक्की के दौर में तर्ज जिंदगी में नुमाया तब्दीली आने से खुराक से मुतालिक मसाइल सामने आए, जिनमें अकेले अहल खाना के साथ खाने की बजाय अकेले खाने और बाहर खाने की शरह में इजाफा शामिल है।
2: अरे हाँ, दस्तरखान पे खाने की वाकई कमी हुई है। और मेरी एक हमसाई बताती हैं कि नौ उम्र बच्चे, ऐसे बच्चे जो स्कूलों में 9वीं 10वीं में हैं और वो स्कूल के बाद और कोई ना कोई पढ़ाई करते हैं, वो अपना खाना या रात गए खाने की खरीदारी कन्वीनियंस स्टोरों से खरीद के अलाबला खा लेते हैं।
0: बिल्कुल ऐसे।
1: बिल्कुल, नए दौर के खाने और बेवक्त खाने या फिर बाजारी खानों वगैरह से मोटापा, डायबिटीज और तर्ज जिंदगी से मुतालिक बीमारियां बढ़ने का खदशा होता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, इसी खदशे की बिना पे खलील साहब शोकु इकु की जरूरत महसूस हुई और जापान में 2005 एक्ट ऑन शोकु इकु बना, ताकि इल्म और महारत को बरोएकार लाकर अच्छी सेहत के लिए मौजू खाने मुंतखब किए जा सकें।
0: जापान में इसे सिर्फ निसाब में ही नहीं बल्कि मश्क और तजुर्बात के जरिए भी पढ़ाया जाता है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस तरह की आगाही की भी अब अशद ज़रूरत है।
2: वैसे वहाँ भी किसी ज़माने में दस्तरखान के आदाब तो दादा दादी ही सिखा देते थे कि खाना गिराना नहीं है, प्लेट में बचाना नहीं है और जो पका है वही खाना है, बाहर का अलावला नहीं खाना। लेकिन वहाँ भी अब पिज़्ज़ा, बर्गर और नूडल्स का रवाज अब बढ़ रहा है।
0: जी,
2: इसीलिए ये ऐसा तो कानून जहाँ भी होगा बेहतरी लाएगा और सेहत लाएगा। और सामिन, इस सिलसिले में हम चंद अमली तजुर्बात का भी जिक्र करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद। फिलहाल सामिन के पैगाम और फिर गाने के बाद एक खास और खास ऐलान भी आज के प्रोग्राम में हमने शामिल करना है।
1: तो मेरे पास हैं कुछ पैगाम और ये पहला पैगाम ननकाना साहब पाकिस्तान से मेहर अब्दुस्सत्तार सेल्फी का है। लिखते हैं, ओरिगामी और कागज़ के हवाले से 19 अप्रैल का दीवान खाना लाजवाब था। 1 करोड़ कागजी कुंजें बनाने वाली बात दिलचस्प लगी। सूफिया जमशेद साहिबा, वसीमा आबिद साहिबा और गुल रहमान भाई को खुसूसी सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम मेहर अब्दुस्सत्तार सल्फी साहब, कहिए कैसे हैं और बकरीद कैसी गुजरी?
2: मुझे सेल्फी साहब, आपने 19 अप्रैल का दीवान खाना सुना, उसे सराहा और उस पर पैगाम लिख डाला, हमें बहुत खुशी हुई है, बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम में नन्नी बच्ची सादा को सासाकी के बारे में बताया गया था, जिसने हिरोशिमा के एटम बम हमले से मुतासर होने के बाद अपनी सेहतयाबी की तमन्ना के लिए कागज़ से 1000 कुंजें बनाना शुरू की थी, लेकिन बदकिस्मती बेचारी जख्मों से जानबर ना हो सकी।
0: इसी प्रोग्राम में कागज़ और ओरिगामी की तारीख भी बताई गई थी।
1: اب پاکستان سے نعیمہ صاحبہ کا پیغام ہے، لکھتی ہیں السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام نعیمہ بہن، کیسی ہیں آپ؟
1: نعیمہ صاحبہ مزید لکھتی ہیں، ویسے تو آپ کے سارے ہی پروگرام بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جب پاکستان کے حوالے سے کوئی پروگرام ہو تو اس کو سننے کا جذبہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، کیونکہ میرا تعلق بھی پاکستان سے ہے۔
2: نعیمہ بہن، پیغام کا اور محفل میں رونق لگانے کا بہت شکریہ، اپنا ملک تو سبھی کو پیارا ہوتا ہے۔
0: جی، بقول شاعر، اے میرے ملک تیری فضاؤں کی خیر ہو، دریاؤں جھیلوں چشموں ہواؤں کی خیر ہو۔
2: سب کچھ سمیٹ دیا ایک سرزمین میں، کیا بات ہے صوفیہ۔ سامعین، اب موسیقی کا وقت ہوا جاتا ہے۔
1: آج کے گیت کا عنوان ہے ہیلتھ یعنی صحت، اسے پیش کرنے والا گروپ ہے اورنج رینج۔
0: جی، اورنج رینج اوکیناوا کا 5 رکنی راک بینڈ ہے جو 2001 میں قائم ہوا اور 22 فروری 2022 کو البم اورنج بال کی انڈی ڈیبیو کیا،
2: اور پھر 2003 میں سنگل کری کری مائی کے ساتھ بڑے لیبل پہ ڈیبیو کیا۔ وہ 2026 میں گروپ کی 25ویں سالگرہ منانے والے ہیں۔
0: موسیقی کے صنف کو چیلنج کرنے والی ان کی آزاد خیال مگر انتہائی نفیس موسیقی اور غیر معمولی مقبولیت نے توجہ حاصل کی ہے، اور وہ مسلسل متعدد کلاسک ہٹس پیش کرتے آئے ہیں۔
2: ان کا آج کا یہ گانا ہیلتھ صرف پرہیزی خوراک کے بارے میں نہیں بلکہ صحت مند طرز زندگی کے بارے میں ہے، چاہے وہ اچھی خوراک کی عادات ہوں یا پھر ورزش وغیرہ کی۔
1: گانے کے بولوں میں بسیار خوری یا خود کی دیکھ بھال نہ کرنے جیسی غیر صحت مند عادات کے ادراک، صرف جسمانی وزن ہی نہیں بلکہ غذائیت اور جسمانی سرگرمی کے توازن کی اہمیت اور مجموعی صحت و عافیت پر توجہ مرکوز کی گئی ہے،
0: اور اس پر بھی زور دیا گیا ہے کہ کئی ناکامیوں کے بعد بھی دوبارہ شروع کیا جا سکتا ہے۔ صحت مند چوائس کا انحصار آپ کے اپنے فیصلے ہیں، جو خوراک کی تعلیم کے تصور سے جڑا ہے۔
2: اور گانے میں یہ بھی ہے کہ اپنی صحت بہتر بنانا مثبت اور حوصلہ افزا ہو سکتا ہے، کچھ بھی ایسا جس سے آپ لطف اندوز ہو سکیں، خاص طور پر رقص جیسی ورزشی حرکات کے ذریعے۔ آج کا گیت ہیلتھ ہے، جس میں اس حسین جل پری کا ذکر ہے جو بیچاری موٹی ہو گئی ہے، تو آئیے سنتے ہیں۔

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ शांग्रिला जैन
1: और मैं हूँ वायला खवानो।
0: आज चरी के देश से कार्यक्रम के तहत हम स्टूडियो से बाहर निकलकर नीले आसमान के तले एक वाहन पर सवार होकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं।
1: मुझे लगता है कि आपको इंजन की थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई दे रही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वाहन क्या है? मुझे लगता है कि इसकी आवाज से हर कोई वाकिफ होगा।
0: सही कहा, दरअसल हम अभी ऑटो रिक्शा पर सवार हैं। हवा से बातें करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है।
1: मुझे तो ऑटो में बैठे एक अरसा हो गया है, इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। भारत में ऑटो के बिना काम नहीं, लेकिन जापान में ये बहुत ही अनोखा वाहन है जो शायद ही नजर आए।
0: और इससे भी अधिक अनोखी बात यह है कि ऑटो रिक्शा चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी हिंदी सेवा की प्रोड्यूसर युमी होरिकोशी जी हैं। हाल ही में हमें पता चला कि होरिकोशी जी ने एक ऑटो रिक्शा खरीदा है, तो हमारा मन नहीं माना और हम आ गए साइतामा प्रिफेक्चर। नमस्ते होरिकोशी जी।
2: नमस्ते, मेरे शहर फुकुया में आपका स्वागत है।
1: आज हम होरिकोशी जी के ऑटो रिक्शा के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे, लेकिन आपके पत्रों को भी पूरा स्थान दिया जाएगा, इसलिए चिंता ना करें और इस सफर पर हमारे साथ रहें।
0: चलिए अब एक पार्क की ओर चलते हैं ताकि हम होरिकोशी जी के साथ उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुन सकें।
1: दोस्तों, अब हम फुकुया शहर के एक उद्यान की पार्किंग में पहुंच गए हैं, जहां एक सामुदायिक केंद्र है और खेल का मैदान भी। लेकिन हाँ, ऑटो की कंपन और पेट्रोल की गंध की पुरानी यादें ताजा हो गईं।
0: दोस्तों, अभी हमने जिस ऑटो रिक्शा की सवारी की है ना, वह हमारे बगल में है और इसे गौर से देखें तो इसकी बॉडी का रंग बड़ा ही स्टाइलिश है। मुख्य बॉडी क्रीम रंग की है और निचले आधे हिस्से का रंग थोड़ा गहरा है, शायद हम कह सकते हैं ये चाय का रंग है।
1: हाँ जी हाँ, बहुत ही स्टाइलिश है। तो होरिकोशी जी, यहाँ आइए और बताइए कि ये जो रंग है ऑटो का, तो इसकी आपने खास फरमाइश की थी?
2: जी हाँ, खरीदते समय ऑटो के हर भाग जैसे मुख्य बॉडी, सामने का हिस्सा और साइड कवर और हुड के लिए आप तरह तरह के रंगों के मॉडल में से अपना पसंदीदा रंग चुनकर ऑर्डर दे सकते हैं। मैंने अपने पसंदीदा भूरे रंग को आधार बनाकर ये रंग चुना, तो मेरा ऑटो रिक्शा दुनिया में केवल एक है और इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है।
0: और आपके जैसा भी कोई दूजा नहीं है।
1: जी हाँ, और ये देखिए, ये ऑटो का रंग जो ऐसा है, मैंने कभी पहले नहीं देखा और कभी देखा भी नहीं होगा, तो बिल्कुल ये किसी से भी मिलता जुलता नहीं है।
0: लेकिन ये बताएं कि आपको ऑटो खरीदने की इच्छा क्यों हुई?
2: जी हाँ, जब मैं दिल्ली में पढ़ रही थी तो मैं हर दिन ऑटो का इस्तेमाल करती थी। ये सुविधाजनक वाहन मेरा पसंदीदा था।
1: अच्छा।
2: मैंने सुना है कि 1950 और 60 के दशक के आसपास जापान में भी थ्री व्हीलर बहुत हुआ करते थे।
1: अच्छा।
2: लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थान दे दी कारों ने। अब आप जापान में शायद ही कोई थ्री व्हीलर देख सकते हैं। लेकिन कुछ साल पहले मुझे पता चला कि एक कंपनी है जो ऑटो रिक्शा जापान आयात करके बेचती है। मेरा सपना था कि एक दिन मेरे पास भी ऑटो रिक्शा हो।
0: अरे वाह, तो इसे आपने कहाँ से खरीदा?
2: जापान के विभिन्न हिस्सों में ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर वाहनों का कारोबार करने वाली कई कंपनियां हैं, लेकिन मैंने पश्चिमी जापान के ह्योगो प्रीफेक्चर की एक कंपनी से खरीदा जो ये वाहन आयात करती है और उन्हें बेचती है। ये कंपनी पाकिस्तान में सजगर कंपनी के ऑटो रिक्शा आयात करती है और उन्हें जापान में अच्छा मेंटेनेंस करके बेचती है। इनकी डिज़ाइन पुराने ज़माने के हैं जो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने इसी कंपनी से खरीदने का फैसला किया।
1: अच्छा, ये बात है। तो अब ये बताइए कि जापान में किस तरह के लोग ऑटो रिक्शा चलाते हैं?
2: हमने ऑटो रिक्शा आयात करने वाली कंपनी गैरेज बोस्को के अध्यक्ष मोरी तोमोनोब जी से इसके बारे में पूछा। उनका कहना था, मोरी जी कह रहे हैं कि पहले भी और आज कर भी कुछ बुजुर्ग और इसके दीवाने लोग इसे खरीदते हैं। समय के साथ ऑटो रिक्शा में सुधार हुए हैं और अब इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। अब कोई भी इसे चला सकता है, इसलिए तरह तरह के आयु वर्ग के लोग इसे चला रहे हैं। रिटायर होने के बाद इसे चलाने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। कुछ युवा महिलाएं हैं जो मैनुअल गियर हटवा कर इसे ऑटोमेटिक गियर में बदल कर चला रही हैं, यानी हर तरह के लोग हैं।
0: सही कहा आपने, ऑटो आमतौर पर गियर वाले होते हैं, लेकिन इसे बिना गियर यानी ऑटोमेटिक गियर में तब्दील कराया जा सकता है, ताकि अगर आपके पास केवल ऑटोमेटिक वाहन चलाने का लाइसेंस है तो भी आप इसे चला सकते हैं, यानी मैं भी इसे चला सकती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या ऑटो की मांग बढ़ रही है जापान में?
2: मोरीजी की कंपनी ऑटो आयात करने के बाद उसकी मेंटेनेंस में समय लेती है और लगभग 40 ऑटो ही प्रतिवर्ष आयात करती है। मेंटेनेंस का काम सावधानी से किया जाता है, इसलिए इससे अधिक ऑटो आयात करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि मांग पहले की तुलना में धीरे धीरे बढ़ रही है।
1: अच्छा, तो होरिकोशी जी, आपको भी ऑर्डर देने के बाद डिलीवरी तक समय लगा?
2: जी, मैंने भी डिलीवरी तक काफी इंतजार किया, 1 साल से भी ज्यादा।
0: अच्छा,
2: मुझे आश्चर्य हुआ कि ये इतना लोकप्रिय है। ऑटो रिक्शा देखने में बेशक आकर्षक है और सुविधाजनक, क्योंकि मोड़ने या तंग रास्तों आदि से आसानी से निकल जाता है, लेकिन अपनी बात करूं तो ये एक फायदा ये भी है कि रखरखाव की लागत कम है।
0: होरिकोशी जी, जापान में ऑटो रिक्शा चलाने के लिए आपके पास किस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए? क्या आपने कोई खास तरह का प्रशिक्षण लिया इसके लिए?
2: बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास साधारण कार ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसे चला सकते हैं। अच्छा। यातायात नियम बाकी मोटर वाहनों के समान है, लेकिन ऑटो रिक्शा को मोटरसाइकिल के वर्ग में रखा गया है, इसलिए वाहन निरीक्षण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: दोस्तों, जापान में वाहन निरीक्षण यानी नियमित रूप से वाहन की जांच कराना कानूनन अनिवार्य है। इस निरीक्षण से ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी कार या वाहन सुरक्षा मानकों पर खरा उतरे।
2: हाँ जी, साथ ही कारों की तुलना में टैक्स भी कम है और आपको इसे पार्क करने की जगह का प्रमाण पत्र भी नहीं देना पड़ता है।
0: ये तो अच्छा है। अभी कई सारी बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे, और अब समय हो रहा है कुछ पत्रों को लेने का। तो चलिए पत्रों का सिलसिला शुरू करते हैं। आरा बिहार से राम कुमार नीरज जी के इस पत्र से है तो काफी लंबा, लेकिन हमेशा की तरह नीरज जी विषय के हर पहलू पर गहराई से नजर डालते हैं और विस्तार से अपनी बात रखते हैं। हिंदी सेवा परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम के साथ वे लिखते हैं, शॉर्ट वेव रेडियो की धीमी लेकिन जादुई तरंगों से लेकर आज तक के आधुनिक इंटरनेट रेडियो और डिजिटल मीडिया की चमकदार दुनिया तक मानव सभ्यता ने संचार तकनीक का एक लंबा सफर तय किया है। समय बदला, तकनीक बदली, लोगों की आदतें बदली, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो केवल कानों तक नहीं बल्कि दिलों तक पहुंचती हैं और पीढ़ियों की स्मृतियों में हमेशा जीवित रहती हैं। मेरे लिए रेडियो जापान हिंदी सेवा ऐसी ही एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। आज सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो उपलब्ध हैं। लोग 10 सेकेंड, 30 सेकेंड या 50 सेकेंड के छोटे वीडियो देखकर ये मान लेते हैं कि उन्होंने किसी विषय को पूरी तरह समझ लिया, लेकिन क्या वास्तव में इतनी जल्दी किसी समाज, संस्कृति, इतिहास या मानवीय संवेदनाओं को समझा जा सकता है? शायद नहीं। रेडियो का संसार अलग था, वहाँ शब्दों में ठहराव था, आवाजों में अपनापन था और सुनने वालों के भीतर कल्पना की एक पूरी दुनिया जन्म लेती थी।
1: नीरज जी ने आगे लिखा है कि मुझे आज भी बचपन और युवावस्था के वे दिन याद आते हैं जब रात के सन्नाटे में शॉर्टवेव रेडियो सेट पर दूर देशों की आवाजें खोजा करते थे। कभी हल्की खराश, कभी तरंगों का कंपन और फिर अचानक एक साफ आवाज सुनाई देती थी, ये रेडियो जापान की हिंदी सेवा है। उस क्षण में मन में जो खुशी और रोमांच पैदा होता था उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। ऐसा लगता था जैसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई अपना व्यक्ति हमसे संवाद कर रहा हो।
0: पुराने समय को याद करते हुए वे आगे लिखते हैं, 70 और 80 के दशक में विकसित हुई श्रोता संस्कृति वास्तव में मानव संवाद की एक अनोखी परंपरा थी। उस समय रेडियो सुनना केवल मनोरंजन नहीं था बल्कि यह ज्ञान, संवेदना और विश्व मैत्री का माध्यम था। लोग कार्यक्रम सुनकर अपने विचार पत्रों के माध्यम से भेजते थे। जब किसी श्रोता का पत्र कार्यक्रम में पढ़ा जाता तो वो केवल एक व्यक्ति की आवाज नहीं रहती थी बल्कि हजारों श्रोताओं की सामूहिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व बन जाती थी।
1: नीरज जी पुराने और नए दौर के बीच अंतर पर लिखते हैं, आज के डिजिटल युग में शायद नई पीढ़ी उस अनुभव को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाएगी। आज सब कुछ बहुत तेज हो गया है, सूचना तेजी से आती है और उतनी ही तेजी से भुला भी दी जाती है, लेकिन रेडियो सुनने का अनुभव धैर्य सिखाता था, श्रोता ध्यान से सुनता था, कल्पना करता था, सोचता था और फिर अपनी प्रतिक्रिया लिखता था। यही प्रक्रिया व्यक्ति के भीतर संवेदनशीलता और गहराई पैदा करती थी। आज इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस दौर में भी जब NHK वर्ल्ड जापान से हिंदी सेवा की आवाज सुनाई देती है तो मन में एक अजीब सी आत्मीयता जाग उठती है। ऐसा महसूस होता है जैसे समय बदल गया हो, दुनिया बदल गई हो, लेकिन कुछ रिश्ते अब भी वैसे ही सच्चे और जीवित हैं।
0: नीरज जी, वाकई पुराने दौर की कई बातें अक्सर याद आती हैं, लेकिन समय के साथ कदम मिलाना भी तो जरूरी है।
1: जी, इसीलिए रेडियो के साथ ही वेबसाइट पर भी नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब लेते हैं ये पत्र पूर्व बर्धमान पश्चिम बंगाल से प्रदीप बसाक जी का। उन्हें नागारा नदी में जलकाक की मदद से मछली पकड़ने की करीब 1300 साल पुरानी जापानी परंपरा के बारे में फेसबुक पर डाली वीडियो बड़ी मजेदार लगी। लिखते हैं, ये कला केवल मछली पकड़ने की तकनीक नहीं बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरे विश्वास, सहयोग और संवेदनशीलता का अनुपम उदाहरण है। जब रात्रि के अंधकार में नदी के शांत जल पर छोटी छोटी नौकाएं दीपों की रोशनी से जगमगा उठती हैं और प्रशिक्षित जलकाग अपने स्वामी के संकेत पर मछलियां पकड़ते हैं, तब वो दृश्य किसी जीवित लोककथा से कम नहीं लगता। ये परंपरा जापानी संस्कृति की उस आत्मा को दर्शाती है जहां आधुनिकता के बीच भी लोग अपनी जड़ों और इतिहास को सहेज कर रखते हैं।
0: वाकई बड़ी मजेदार वीडियो है और प्रदीप जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया इसका। और इसी वीडियो पर विश LM की फेसबुक पर टिप्पणी है, क्रेजी फेस्टिवल ऑफ जापान, जापान का मस्त उत्सव। वहीं पश्चिमी जापान के ह्योगो प्रिफेक्चर में मध्ययुगीन काल के प्रभावशाली परिवारों द्वारा निर्मित दो मकानों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की रिपोर्ट पर अरुण कुमार जैन की फेसबुक टिप्पणी है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए जितना जापान जागरूक है, काश बाकी सभी देश भी उसी तरह से अपने यहाँ की विरासतों के लिए जागरूक होते। भारत में ऐसे बहुत से मध्ययुगीन घर हैं जिन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य से काम हो नहीं पा रहा है। इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए हैं लेकिन वे नाकाफी हैं। आपकी रपट में वर्णित दोनों जापानी शहरों में जाने का मुझे मौका मिला था और जिस प्रकार से जापान अपने पुराने नगरों को आधुनिक रूप से विकसित करते हुए भी अपने अतीत को संजोया है, विशेष रूप से क्योतो में, वह अभिभूत करता है।
1: जापान में पहली बार निजी आवासों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया जाएगा, जो वाकई अच्छी खबर है। अरुण जी, आपने सही कहा, भारत में भी अनेक हवेलियां और मकान हैं जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए।
0: चलिए अब ऑटो रिक्शा पर वापस आते हैं
1: जी।
0: तो होरिकोशी जी, ये बताइए कि जब आप ऑटो रिक्शा से निकलती हैं तो आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है?
2: मुझे लगता है कि ये लोगों से बातचीत शुरू करने का एक नया साधन बन गया है। अनजान लोग मुझसे बातें करते हैं, सवार करते हैं, हर कोई इस अनोखे वाहन को देखकर उत्साहित हो जाता है और ये सभी का ध्यान आकर्षित करता है। बहुत से लोग मेरे ऑटो को देखकर मुस्कुराते हैं और हर दिन इसकी सवारी करने में बहुत मजा आता है। अरे हाँ, जिस दिन ऑटो आया था उसके अगले दिन ही एक भारतीय दोस्त टोक्यो से इसकी सवारी करने यहाँ तक आया। उस समय जापान में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी तो बड़ी ही रोमांचक ड्राइव रही।
1: अच्छा, ऐसा हुआ। वैसे देखिए, भारत में केवल टैक्सी की तरह यानी सवारी बिठाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाया जाता है, लेकिन जापान में लोग इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं?
2: मैंने मोरी जी से इसके बारे में पूछा। मोरी जी बता रहे हैं कि अब लोग काम पर जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल शौक के लिए शनिवार या रविवार को चलाते हैं, यानी लोग तरह तरह से इसका आनंद ले रहे हैं।
0: अच्छा, ये बात है।
2: मोरी जी ये भी बता रहे थे कि ऑटो रिक्शा के पिछले हिस्से में छोटी सी रसोई बनाकर यानी ऑटो को किचन कार की तरह बनाने की मांग भी है, ताकि घूम घूम कर खाने पीने की चीजें बेची जा सके। इसके अलावा पीछे की सीट को और बड़ा करके सोने की जगह बनाने से कैंपिंग कार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार के ऑर्डर भी बढ़ रहे हैं।
1: वाह, क्या बात है, किचन कार और कैंपिंग कार, ऐसा लगता है कि लोग अपनी पसंद के अनुसार इसमें बदलाव करके इसका आनंद ले रहे हैं ना।
0: जी, मुझे याद आया कि हर साल योयोगी पार्क पे होने वाला नमस्ते इंडिया में एक चाय की दुकान लगती है, याद है ना,
1: हाँ।
0: जो वास्तव में ऑटो रिक्शा किचन कार है, वह भी काफी अनोखा प्रयास है,
1: है ना।
2: जी हाँ, बिल्कुल। इससे आप लोगों का ध्यान खींच सकते हैं और कारोबारी उपयोग के लिए एकदम सही है। बेशक अपने परिवार को स्टेशन लाने ले जाने या अकेले पास में खरीदारी करने के लिए भी इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। ये सच में बहुत सुविधाजनक है। मुझे लगता है कि ये जापान की जीवन शैली के लिए एकदम सही वाहन है। हाल में जापान में ईवी ऑटो रिक्शा बेचने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटन स्थलों या फिर स्थानीय सरकारों द्वारा इसे खरीदे जाने के मामले भी सामने आए हैं। रखरखाव की कम लागत, छोटा आकार और पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण मुझे लगता है कि ये आगे भी लोकप्रिय वाहन के रूप में उभर कर आएगा।
0: जी, मुझे भी यही लगता है कि ये इतना सुविधाजनक है कि टोक्यो के लिए मैं भी इसे खरीद लूं, पर पता नहीं है मैं इसे टोक्यो में चला सकती हूं या नहीं।
1: जी हाँ, तो आप देखिए, कार्यक्रम के अंत में आपसे विदा लेते हैं इस गीत के साथ, जो आपको ऑटो रिक्शा में सवार होकर बाहर घूमने जाने के लिए विवश कर सकता है। गीत है इन दोनों माचियो जोनिनोत से, यानी भारत की नगरी में घूमे हाथी पर होकर सवार। गाय है रोकुमोन सेन ने।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ शांग्रिला जैन
1: और मैं हूँ वायला खवानो।
0: आज चरी के देश से कार्यक्रम के तहत हम स्टूडियो से बाहर निकलकर नीले आसमान के तले एक वाहन पर सवार होकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं।
1: मुझे लगता है कि आपको इंजन की थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई दे रही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वाहन क्या है? मुझे लगता है कि इसकी आवाज से हर कोई वाकिफ होगा।
0: सही कहा, दरअसल हम अभी ऑटो रिक्शा पर सवार हैं। हवा से बातें करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है।
1: मुझे तो ऑटो में बैठे एक अरसा हो गया है, इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। भारत में ऑटो के बिना काम नहीं, लेकिन जापान में ये बहुत ही अनोखा वाहन है जो शायद ही नजर आए।
0: और इससे भी अधिक अनोखी बात यह है कि ऑटो रिक्शा चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी हिंदी सेवा की प्रोड्यूसर युमी होरिकोशी जी हैं। हाल ही में हमें पता चला कि होरिकोशी जी ने एक ऑटो रिक्शा खरीदा है, तो हमारा मन नहीं माना और हम आ गए साइतामा प्रिफेक्चर। नमस्ते होरिकोशी जी।
2: नमस्ते, मेरे शहर उकाया में आपका स्वागत है।
1: आज हम होरिकोशी जी के ऑटो रिक्शा के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे, लेकिन आपके पत्रों को भी पूरा स्थान दिया जाएगा, इसलिए चिंता ना करें और इस सफर पर हमारे साथ रहें।
0: चलिए अब एक पार्क की ओर चलते हैं ताकि हम होरिकोशी जी के साथ उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुन सकें।
1: दोस्तों, अब हम फुकाया शहर के एक उद्यान की पार्किंग में पहुंच गए हैं, जहां एक सामुदायिक केंद्र है और खेल का मैदान भी। लेकिन हाँ, ऑटो की कंपन और पेट्रोल की गंध की पुरानी यादें ताजा हो गईं।
0: दोस्तों, अभी हमने जिस ऑटो रिक्शा की सवारी की है ना, वह हमारे बगल में है और इसे गौर से देखें तो इसकी बॉडी का रंग बड़ा ही स्टाइलिश है। मुख्य बॉडी क्रीम रंग की है और निचले आधे हिस्से का रंग थोड़ा गहरा है, शायद हम कह सकते हैं ये चाय का रंग है।
1: हाँ जी हाँ, बहुत ही स्टाइलिश है। तो होरिकोशी जी, यहाँ आइए और बताइए कि ये जो रंग है ऑटो का, तो इसकी आपने खास फरमाइश की थी।
2: जी हाँ, खरीदते समय ऑटो के हर भाग जैसे मुख्य बॉडी, सामने का हिस्सा और साइड कवर और हुड के लिए आप तरह तरह के रंगों के मॉडल में से अपना पसंदीदा रंग चुनकर ऑर्डर दे सकते हैं। मैंने अपने पसंदीदा भूरे रंग को आधार बनाकर ये रंग चुना, तो मेरा ऑटो रिक्शा दुनिया में केवल एक है और इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है।
0: और आपके जैसा भी कोई दूजा नहीं है।
1: जी हाँ, और ये देखिए, ये ऑटो का रंग जो ऐसा है, मैंने कभी पहले नहीं देखा और कभी देखा भी नहीं होगा, तो बिल्कुल ये किसी से भी मिलता जुलता नहीं है।
0: लेकिन ये बताएं कि आपको ऑटो खरीदने की इच्छा क्यों हुई?
2: जी हाँ, जब मैं दिल्ली में पढ़ रही थी तो मैं हर दिन ऑटो का इस्तेमाल करती थी। ये सुविधाजनक वाहन मेरा पसंदीदा था।
1: अच्छा।
2: मैंने सुना है कि 1950 और 60 के दशक के आसपास जापान में भी थ्री व्हीलर बहुत हुआ करते थे।
1: अच्छा।
2: लेकिन धीरे धीरे उनकी स्थान दे दी कारों ने। अब आप जापान में शायद ही कोई थ्री व्हीलर देख सकते हैं। लेकिन कुछ साल पहले मुझे पता चला कि एक कंपनी है जो ऑटो रिक्शा जापान आयात करके बेचती है। मेरा सपना था कि एक दिन मेरे पास भी ऑटो रिक्शा हो।
0: अरे वाह, तो इसे आपने कहाँ से खरीदा?
2: जापान के विभिन्न हिस्सों में ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर वाहनों का कारोबार करने वाली कई कंपनियां हैं, लेकिन मैंने पश्चिमी जापान के ह्योगो प्रीफेक्चर की एक कंपनी से खरीदा जो ये वाहन आयात करती है और उन्हें बेचती है। ये कंपनी पाकिस्तान में सजगर कंपनी के ऑटो रिक्शा आयात करती है और उन्हें जापान में अच्छा मेंटेनेंस करके बेचती है। इनकी डिज़ाइन पुराने ज़माने के हैं जो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने इसी कंपनी से खरीदने का फैसला किया।
1: अच्छा, ये बात है। तो अब ये बताइए कि जापान में किस तरह के लोग ऑटो रिक्शा चलाते हैं?
2: हमने ऑटो रिक्शा आयात करने वाली कंपनी गैरेज बोस्को के अध्यक्ष मोरी तोमोनोबुजी से इसके बारे में पूछा। उनका कहना था, मोरी जी कह रहे हैं कि पहले भी और आजकल भी कुछ बुजुर्ग और इसके दीवाने लोग इसे खरीदते हैं। समय के साथ ऑटो रिक्शा में सुधार हुए हैं और अब इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। अब कोई भी इसे चला सकता है, इसलिए तरह तरह के आयु वर्ग के लोग इसे चला रहे हैं। रिटायर होने के बाद इसे चलाने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। कुछ युवा महिलाएं हैं जो मैनुअल गियर हटवा कर इसे ऑटोमेटिक गियर में बदल कर चला रही हैं। यानी हर तरह के लोग हैं।
0: सही कहा आपने, ऑटो आमतौर पर गियर वाले होते हैं, लेकिन इसे बिना गियर यानी ऑटोमेटिक गियर में तब्दील कराया जा सकता है, ताकि अगर आपके पास केवल ऑटोमेटिक वाहन चलाने का लाइसेंस है तो भी आप इसे चला सकते हैं, यानी मैं भी इसे चला सकती हूँ। अच्छा ये बताइए कि क्या ऑटो की मांग बढ़ रही है जापान में?
2: मोरीजी की कंपनी ऑटो आयात करने के बाद उसकी मेंटेनेंस में समय लेती है और लगभग 40 ऑटो ही प्रतिवर्ष आयात करती है। मेंटेनेंस का काम सावधानी से किया जाता है, इसलिए इससे अधिक ऑटो आयात करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि मांग पहले की तुलना में धीरे धीरे बढ़ रही है।
1: अच्छा तो होरिकोशी जी, आपको भी ऑर्डर देने के बाद डिलीवरी तक समय लगा?
2: जी, मैंने भी डिलीवरी तक काफ़ी इंतज़ार किया, एक साल से भी ज़्यादा।
0: अच्छा,
2: मुझे आश्चर्य हुआ कि ये इतना लोकप्रिय है। ऑटो रिक्शा देखने में बेशक आकर्षक है और सुविधाजनक, क्योंकि मोड़ने या तंग रास्तों आदि से आसानी से निकल जाता है, लेकिन अपनी बात करूं तो ये एक फ़ायदा ये भी है कि रखरखाव की लागत कम है।
0: होरिकोशी जी, जापान में ऑटो रिक्शा चलाने के लिए आपके पास किस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए? क्या आपने कोई खास तरह का प्रशिक्षण लिया इसके लिए?
2: बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास साधारण कार ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसे चला सकते हैं। अच्छा। यातायात नियम बाकी मोटर वाहनों के समान हैं, लेकिन ऑटो रिक्शा को मोटरसाइकिल के वर्ग में रखा गया है, इसलिए वाहन निरीक्षण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
1: दोस्तों, जापान में वाहन निरीक्षण यानी नियमित रूप से वाहन की जांच कराना कानूनन अनिवार्य है। इस निरीक्षण से ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी कार या वाहन सुरक्षा मानकों पर खरा उतरे।
2: हाँ जी, साथ ही कारों की तुलना में टैक्स भी कम है और आपको इसे पार्क करने की जगह का प्रमाण पत्र भी नहीं देना पड़ता है।
0: ये तो अच्छा है। अभी कई सारी बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे, और अब समय हो रहा है कुछ पत्रों को लेने का। तो चलिए पत्रों का सिलसिला शुरू करते हैं। आरा बिहार से राम कुमार नीरज जी के इस पत्र से है तो काफी लंबा, लेकिन हमेशा की तरह नीरज जी विषय के हर पहलू पर गहराई से नजर डालते हैं और विस्तार से अपनी बात रखते हैं। हिंदी सेवा परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम के साथ वे लिखते हैं, शॉर्ट वेव रेडियो की धीमी लेकिन जादुई तरंगों से लेकर आज तक के आधुनिक इंटरनेट रेडियो और डिजिटल मीडिया की चमकदार दुनिया तक मानव सभ्यता ने संचार तकनीक का एक लंबा सफर तय किया है। समय बदला, तकनीक बदली, लोगों की आदतें बदली, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो केवल कानों तक नहीं बल्कि दिलों तक पहुंचती हैं और पीढ़ियों की स्मृतियों में हमेशा जीवित रहती हैं। मेरे लिए रेडियो जापान हिंदी सेवा ऐसी ही एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। आज सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो उपलब्ध हैं। लोग 10 सेकेंड, 30 सेकेंड या 50 सेकेंड के छोटे वीडियो देखकर ये मान लेते हैं कि उन्होंने किसी विषय को पूरी तरह समझ लिया, लेकिन क्या वास्तव में इतनी जल्दी किसी समाज, संस्कृति, इतिहास या मानवीय संवेदनाओं को समझा जा सकता है? शायद नहीं। रेडियो का संसार अलग था, वहाँ शब्दों में ठहराव था, आवाजों में अपनापन था और सुनने वालों के भीतर कल्पना की एक पूरी दुनिया जन्म लेती थी।
1: नीरज जी ने आगे लिखा है कि मुझे आज भी बचपन और युवावस्था के वे दिन याद आते हैं जब रात के सन्नाटे में शॉर्टवेव रेडियो सेट पर दूर देशों की आवाजें खोजा करते थे। कभी हल्की खराश, कभी तरंगों का कंपन और फिर अचानक एक साफ आवाज सुनाई देती थी, ये रेडियो जापान की हिंदी सेवा है। उस क्षण में मन में जो खुशी और रोमांच पैदा होता था उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। ऐसा लगता था जैसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई अपना व्यक्ति हमसे संवाद कर रहा हो।
0: पुराने समय को याद करते हुए वे आगे लिखते हैं, 70 और 80 के दशक में विकसित हुई श्रोता संस्कृति वास्तव में मानव संवाद की एक अनोखी परंपरा थी। उस समय रेडियो सुनना केवल मनोरंजन नहीं था बल्कि यह ज्ञान, संवेदना और विश्व मैत्री का माध्यम था। लोग कार्यक्रम सुनकर अपने विचार पत्रों के माध्यम से भेजते थे। जब किसी श्रोता का पत्र कार्यक्रम में पढ़ा जाता तो वो केवल एक व्यक्ति की आवाज नहीं रहती थी बल्कि हजारों श्रोताओं की सामूहिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व बन जाती थी।
1: नीरज जी पुराने और नए दौर के बीच अंतर पर लिखते हैं, आज के डिजिटल युग में शायद नई पीढ़ी उस अनुभव को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाएगी। आज सब कुछ बहुत तेज हो गया है, सूचना तेजी से आती है और उतनी ही तेजी से भुला भी दी जाती है, लेकिन रेडियो सुनने का अनुभव धैर्य सिखाता था। श्रोता ध्यान से सुनता था, कल्पना करता था, सोचता था और फिर अपनी प्रतिक्रिया लिखता था। यही प्रक्रिया व्यक्ति के भीतर संवेदनशीलता और गहराई पैदा करती थी। आज इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस दौर में भी जब NHK वर्ल्ड जापान से हिंदी सेवा की आवाज सुनाई देती है तो मन में एक अजीब सी आत्मीयता जाग उठती है। ऐसा महसूस होता है जैसे समय बदल गया हो, दुनिया बदल गई हो, लेकिन कुछ रिश्ते अब भी वैसे ही सच्चे और जीवित हैं।
0: नीरज जी, वाकई पुराने दौर की कई बातें अक्सर याद आती हैं, लेकिन समय के साथ कदम मिलाना भी तो जरूरी है।
1: जी, इसीलिए रेडियो के साथ ही वेबसाइट पर भी नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब लेते हैं ये पत्र पूर्व बर्धमान पश्चिम बंगाल से प्रदीप बसाक जी का। उन्हें नागारा नदी में जलकाग की मदद से मछली पकड़ने की करीब 1300 साल पुरानी जापानी परंपरा के बारे में फेसबुक पर डाली वीडियो बड़ी मजेदार लगी। लिखते हैं, ये कला केवल मछली पकड़ने की तकनीक नहीं बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरे विश्वास, सहयोग और संवेदनशीलता का अनुपम उदाहरण है। जब रात्रि के अंधकार में नदी के शांत जल पर छोटी छोटी नौकाएं दीपों की रोशनी से जगमगा उठती हैं और प्रशिक्षित जलकाग अपने स्वामी के संकेत पर मछलियां पकड़ते हैं, तब वो दृश्य किसी जीवित लोककथा से कम नहीं लगता। ये परंपरा जापानी संस्कृति की उस आत्मा को दर्शाती है जहाँ आधुनिकता के बीच भी लोग अपनी जड़ों और इतिहास को सहेज कर रखते हैं।
0: वाकई बड़ी मजेदार वीडियो है और प्रदीप जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया इसका। और इसी वीडियो पर विश LM की फेसबुक पर टिप्पणी है, क्रेजी फेस्टिवल ऑफ जापान, जापान का मस्त उत्सव। वहीं पश्चिमी जापान के ह्योगो प्रिफेक्चर में मध्ययुगीन काल के प्रभावशाली परिवारों द्वारा निर्मित दो मकानों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की रिपोर्ट पर अरुण कुमार जैन की फेसबुक टिप्पणी है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए जितना जापान जागरूक है, काश बाकी सभी देश भी उसी तरह से अपने यहाँ की विरासतों के लिए जागरूक होते। भारत में ऐसे बहुत से मध्ययुगीन घर हैं जिन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य से काम हो नहीं पा रहा है। इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए हैं लेकिन वे नाकाफी हैं।

0: आपकी रपट में वर्णित दोनों जापानी शहरों में जाने का मुझे मौका मिला था और जिस प्रकार से जापान अपने पुराने नगरों को आधुनिक रूप से विकसित करते हुए भी अपने अतीत को संजोया है, विशेष रूप से क्योतो में, वह अभिभूत करता है।
1: जापान में पहली बार निजी आवासों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया जाएगा, जो वाकई अच्छी खबर है। अरुण जी, आपने सही कहा, भारत में भी अनेक हवेलियां और मकान हैं जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए।
0: चलिए अब ऑटो रिक्शा पर वापस आते हैं
1: जी।
0: तो होरिकोशी जी, ये बताइए कि जब आप ऑटो रिक्शा से निकलती हैं तो आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है?
2: मुझे लगता है कि ये लोगों से बातचीत शुरू करने का एक नया साधन बन गया है। अनजान लोग मुझसे बातें करते हैं, सवार करते हैं, हर कोई इस अनोखे वाहन को देखकर उत्साहित हो जाता है और ये सभी का ध्यान आकर्षित करता है। बहुत से लोग मेरे ऑटो को देखकर मुस्कुराते हैं और हर दिन इसकी सवारी करने में बहुत मज़ा आता है। अरे हाँ, जिस दिन ऑटो आया था उसके अगले दिन ही एक भारतीय दोस्त टोक्यो से इसकी सवारी करने यहाँ तक आया। उस समय जापान में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी तो बड़ी ही रोमांचक ड्राइव रही।
1: अच्छा, ऐसा हुआ। वैसे देखिए, भारत में केवल टैक्सी की तरह यानी सवारी बिठाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाया जाता है, लेकिन जापान में लोग इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं?
2: मैंने मोरी जी से इसके बारे में पूछा। मोरी जी बता रहे हैं कि अब लोग काम पर जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल शौक के लिए शनिवार या रविवार को चलाते हैं, यानी लोग तरह तरह से इसका आनंद ले रहे हैं।
0: अच्छा, ये बात है।
2: मोरी जी ये भी बता रहे थे कि ऑटो रिक्शा के पिछले हिस्से में छोटी सी रसोई बनाकर यानी ऑटो को किचन कार की तरह बनाने की मांग भी है, ताकि घूम घूम कर खाने पीने की चीजें बेची जा सके। इसके अलावा पीछे की सीट को और बड़ा करके सोने की जगह बनाने से कैंपिंग कार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार के ऑर्डर भी बढ़ रहे हैं।
1: वाह, क्या बात है, किचन कार और कैंपिंग कार। ऐसा लगता है कि लोग अपनी पसंद के अनुसार इसमें बदलाव करके इसका आनंद ले रहे हैं ना?
0: जी, मुझे याद आया कि हर साल योयोगी पार्क में होने वाला नमस्ते इंडिया में एक चाय की दुकान लगती है, याद है ना?
1: हाँ हाँ।
0: जो वास्तव में ऑटो रिक्शा किचन कार है, वो भी काफी अनोखा प्रयास है,
1: है ना? हुँ।
2: जी हाँ, बिल्कुल। इससे आप लोगों का ध्यान खींच सकते हैं और कारोबारी उपयोग के लिए एकदम सही है। बेशक अपने परिवार को स्टेशन लाने ले जाने या अकेले पास में खरीदारी करने के लिए भी इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। ये सच में बहुत सुविधाजनक है। मुझे लगता है कि ये जापान की जीवन शैली के लिए एकदम सही वाहन है। हाल में जापान में ईवी ऑटो रिक्शा बेचने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटन स्थलों या फिर स्थानीय सरकारों द्वारा इसे खरीदे जाने के मामले भी सामने आए हैं। रखरखाव की कम लागत, छोटा आकार और पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण मुझे लगता है कि ये आगे भी लोकप्रिय वाहन के रूप में उभर कर आएगा।
0: जी, मुझे भी यही लगता है कि ये इतना सुविधाजनक है कि टोक्यो के लिए मैं भी इसे खरीद लूं, पर पता नहीं है मैं इसे टोक्यो में चला सकती हूं या नहीं।
1: जी हाँ, तो आप देखिए, कार्यक्रम के अंत में आपसे विदा लेते हैं इस गीत के साथ, जो आपको ऑटो रिक्शा में सवार होकर बाहर घूमने जाने के लिए विवश कर सकता है। गीत है इन दोनों माचियो जोनी नोत से, यानी भारत की नगरी में घूमे हाथी पर होकर सवार। गाय है रोकुमोन सेन ने।

0: अच्छा, आप मजीद सुने कि 6 जून से एक दिन कबल 5 तारीख को भारतीय टीम ने दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान को 3-5 गोल से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई थी, जबकि उसी रोज जापानी टीम ने मलेशिया को 1-8 गोल से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह कन्फर्म की थी।
1: सामिन, ये अहवाल था अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का, जो वस्ती जापान के गिफू प्रिंटर में खेला गया,
2: जिसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और मेजबान जापान समेत 9 टीमों ने शिरकत की।
0: तो अब मेरे ख्याल में मौसीकी का वक्त है, तो आज हम भला कौन सा गीत सुन रहे हैं?
1: सर, आज का गीत हमने मिर्जा आसिफ बेग और अंडर 18 टूर्नामेंट के सब शुरका के नाम किया है। इस गीत का उनवान है इची बेओ, यानी एक पल। इसे पेश करने वाला ग्रुप है सिक्स स्टोन्स। लिखा तो इसे सिक्स स्टोन जाता है, लेकिन कहा जाता है स्टोन्स।
2: 6 गुलकारों पर मुश्तमिल ये जापानी आइडल ग्रुप स्टार 2 एंटरटेनमेंट से मुंसलिक है,
1: और इन 6 गुलकारों के नाम हैं जेशी, ताइगा क्योमोतो और होकुतो मत्सुमुरा, यू गो कोची, शिंतारो मोरिमोतो और जूरी तनाका।
0: सामिन, ये गीत 2026 का एथलीट सपोर्ट सॉन्ग है, जो NTV के लिए मिलानो कोर्टिना सरमाई ओलंपिक की तैयारी की गरज से पेश किया गया।
2: ये गाना एक लम्हा भी जाया किए बगैर हर पल को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करने का नजरिया पेश करता है। ये गीत लम्हा ब लम्हा जमा होती मेहनत, जद्दोजहद और आंसुओं के दिनों का अक्कास है।
0: बिल्कुल, ये बेशुमार जमा शुदा सेकेंड्स वो हैं जिनकी हम एतमाद और ताकत के इस्तेहारे के तौर पर चमकने की उम्मीद करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये हर उस शख्स की हौसला अफजाई का गीत है जो अपने ख्वाबों की जस्तजू में रहा है। गीत के बोलों में जिक्र है कि मेरा हर सेकंड, मेरा हर पल जिंदगी भर की रोशनी बन जाता है। तो आइए सुनते हैं।

0: रवाना कर सकते हैं। होम पेज है nhk.jp/urdu। आपके ढेरों पैगामात के मुंतजिर रहेंगे NHK वर्ल्ड जापान के मेज़बानों वसीमा आबिद, खलील शेराजी और सोफिया जमशेद को। अब इजाज़त दीजिए,
1: अल्लाह हाफिज़।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ शांग्रिला जैन
1: और मैं हूँ वायला खवानो।
0: आज चरी के देश से कार्यक्रम के तहत हम स्टूडियो से बाहर निकलकर नीले आसमान के तले एक वाहन पर सवार होकर ये कार्यक्रम कर रहे हैं।
1: मुझे लगता है कि आपको इंजन की थोड़ी थोड़ी आवाज सुनाई दे रही होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वाहन क्या है? मुझे लगता है कि इसकी आवाज से हर कोई वाकिफ होगा।
0: सही कहा, दरअसल हम अभी ऑटो रिक्शा पर सवार हैं। हवा से बातें करते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है।
1: मुझे तो ऑटो में बैठे एक अरसा हो गया है, इसलिए मैं तो बहुत खुश हूँ। भारत में ऑटो के बिना काम नहीं, लेकिन जापान में ये बहुत ही अनोखा वाहन है जो शायद ही नजर आए।
0: और इससे भी अधिक अनोखी बात यह है कि ऑटो रिक्शा चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि हमारी हिंदी सेवा की प्रोड्यूसर युमी होरिकोशी जी हैं। हाल ही में हमें पता चला कि होरिकोशी जी ने एक ऑटो रिक्शा खरीदा है, तो हमारा मन नहीं माना और हम आ गए साइतामा प्रिफेक्चर। नमस्ते होरिकोशी जी।
2: नमस्ते, मेरे शहर उकाया में आपका स्वागत है।
1: आज हम होरिकोशी जी के ऑटो रिक्शा के बारे में और अधिक जानना चाहेंगे, लेकिन आपके पत्रों को भी पूरा स्थान दिया जाएगा, इसलिए चिंता ना करें और इस सफर पर हमारे साथ रहें।
0: चलिए अब एक पार्क की ओर चलते हैं ताकि हम होरिकोशी जी के साथ उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी सुन सकें।
1: दोस्तों, अब हम फुकाया शहर के एक उद्यान की पार्किंग में पहुंच गए हैं, जहां एक सामुदायिक केंद्र है और खेल का मैदान भी। लेकिन हाँ, ऑटो की कंपन और पेट्रोल की गंध की पुरानी यादें ताजा हो गईं।
0: दोस्तों, अभी हमने जिस ऑटो रिक्शा की सवारी की है ना, वह हमारे बगल में है और इसे गौर से देखें तो इसकी बॉडी का रंग बड़ा ही स्टाइलिश है। मुख्य बॉडी क्रीम रंग की है और निचले आधे हिस्से का रंग थोड़ा गहरा है, शायद हम कह सकते हैं ये चाय का रंग है।
1: हाँ जी हाँ, बहुत ही स्टाइलिश है। तो होरिकोशी जी, यहाँ आइए और बताइए कि ये जो रंग है ऑटो का, तो इसकी आपने खास फरमाइश की थी।
2: जी हाँ, खरीदते समय ऑटो के हर भाग जैसे मुख्य बॉडी, सामने का हिस्सा और साइड कवर और हुड के लिए आप तरह तरह के रंगों के मॉडल में से अपना पसंदीदा रंग चुनकर ऑर्डर दे सकते हैं। मैंने अपनी पसंदीदा भूरे रंग को आधार बनाकर ये रंग चुना, तो मेरा ऑटो रिक्शा दुनिया में केवल एक है और इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है।
0: और आपके जैसा भी कोई दूजा नहीं है।
1: जी हाँ, और ये देखिए, ये ऑटो का रंग जो ऐसा है, मैंने कभी पहले नहीं देखा और कभी देखा भी नहीं होगा, तो बिल्कुल ये किसी से भी मिलता जुलता नहीं है।
0: लेकिन ये बताएं कि आपको ऑटो खरीदने की इच्छा क्यों हुई?
2: जी हाँ, जब मैं दिल्ली में पढ़ रही थी तो मैं हर दिन ऑटो का इस्तेमाल करती थी। ये सुविधाजनक वाहन मेरा पसंदीदा था।
1: अच्छा।
2: मैंने सुना है कि 1950 और 60 के दशक के आसपास जापान में भी थ्री व्हीलर बहुत हुआ करते थे।
1: अच्छा।
2: लेकिन धीरे धीरे इनकी स्थान दे दी कारों ने। अब आप जापान में शायद ही कोई थ्री व्हीलर देख सकते हैं। लेकिन कुछ साल पहले मुझे पता चला कि एक कंपनी है जो ऑटो रिक्शा जापान आयात करके बेचती है। मेरा सपना था कि एक दिन मेरे पास भी ऑटो रिक्शा हो।
0: अरे वाह, तो इसे आपने कहाँ से खरीदा?
2: जापान के विभिन्न हिस्सों में ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर वाहनों का कारोबार करने वाली कई कंपनियां हैं, लेकिन मैंने पश्चिमी जापान के ह्योगो प्रीफेक्चर की एक कंपनी से खरीदा जो ये वाहन आयात करती है और उन्हें बेचती है। ये कंपनी पाकिस्तान में सजगर कंपनी के ऑटो रिक्शा आयात करती है और उन्हें जापान में अच्छा मेंटेनेंस करके बेचती है। इनकी डिज़ाइन पुराने ज़माने के हैं जो मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने इसी कंपनी से खरीदने का फैसला किया।
1: अच्छा, ये बात है। तो अब ये बताइए कि जापान में किस तरह के लोग ऑटो रिक्शा चलाते हैं?
2: हमने ऑटो रिक्शा आयात करने वाली कंपनी गैरेज बोस्को के अध्यक्ष मोरी तोमोनोबुजी से इसके बारे में पूछा। उनका कहना था, मोरी जी कह रहे हैं कि पहले भी और आजकल भी कुछ बुजुर्ग और इसके दीवाने लोग इसे खरीदते हैं। समय के साथ ऑटो रिक्शा में सुधार हुए हैं और अब इसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। अब कोई भी इसे चला सकता है, इसलिए तरह तरह के आयु वर्ग

0: के रोग इसे चरा रहे हैं। रिटायर होने के बाद इसे चराने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है। कुछ युवा महिलाएं हैं जो मैनुअल गियर हटवा कर इसे ऑटोमेटिक गियर में बदल कर चरा रही हैं, यानी हर तरह के रोग हैं।
1: सही कहा आपने। ऑटो आमतौर पर गियर वाले होते हैं, लेकिन इसे बिना गियर यानी ऑटोमेटिक गियर में तब्दील कराया जा सकता है, ताकि अगर आपके पास केवल ऑटोमेटिक वाहन चलाने का लाइसेंस है तो भी आप इसे चला सकते हैं, यानी मैं भी इसे चला सकती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या ऑटो की मांग बढ़ रही है जापान में?
0: मोरीजी की कंपनी ऑटो आयात करने के बाद उसकी मेंटेनेंस में समय लेती है और लगभग 40 ऑटो ही प्रतिवर्ष आयात करती है। मेंटेनेंस का काम सावधानी से किया जाता है, इसलिए इससे अधिक ऑटो आयात करना मुश्किल है, लेकिन ऐसा लगता है कि मांग पहले की तुलना में धीरे धीरे बढ़ रही है।
2: अच्छा, तो होरिकोशी जी, आपको भी ऑर्डर देने के बाद डिलीवरी तक समय लगा?
0: जी, मैंने भी डिलीवरी तक काफ़ी इंतज़ार किया, 1 साल से भी ज़्यादा।
1: अच्छा,
0: मुझे आश्चर्य हुआ कि ये इतना लोकप्रिय है। ऑटो रिक्शा देखने में बेशक आकर्षक है और सुविधाजनक, क्योंकि मोड़ने या तंग रास्तों आदि से आसानी से निकल जाता है, लेकिन अपनी बात करूं तो ये एक फायदा ये भी है कि रखरखाव की लागत कम है।
1: होरिकोशी जी, जापान में ऑटो रिक्शा चलाने के लिए आपके पास किस तरह का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए? क्या आपने कोई खास तरह का प्रशिक्षण लिया इसके लिए?
0: बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास साधारण कार ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसे चला सकते हैं। अच्छा। यातायात नियम बाकी मोटर वाहनों के समान हैं, लेकिन ऑटो रिक्शा को मोटरसाइकिल के वर्ग में रखा गया है, इसलिए वाहन निरीक्षण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है।
2: दोस्तों, जापान में वाहन निरीक्षण यानी नियमित रूप से वाहन की जांच कराना कानूनन अनिवार्य है। इस निरीक्षण से ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी कार या वाहन सुरक्षा मानकों पर खरा उतरे।
0: हाँ जी, साथ ही कारों की तुलना में टैक्स भी कम है और आपको इसे पार्क करने की जगह का प्रमाण पत्र भी नहीं देना पड़ता है।
1: ये तो अच्छा है। अभी कई सारी बातें हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे, और अब समय हो रहा है कुछ पत्रों को लेने का। तो चलिए पत्रों का सिलसिला शुरू करते हैं। आरा बिहार से राम कुमार नीरज जी के इस पत्र से है तो काफी लंबा, लेकिन हमेशा की तरह नीरज जी विषय के हर पहलू पर गहराई से नजर डालते हैं और विस्तार से अपनी बात रखते हैं। हिंदी सेवा परिवार के सभी सदस्यों को प्रणाम के साथ वे लिखते हैं, शॉर्ट वेव रेडियो की धीमी लेकिन जादुई तरंगों से लेकर आज तक के आधुनिक इंटरनेट रेडियो और डिजिटल मीडिया की चमकदार दुनिया तक मानव सभ्यता ने संचार तकनीक का एक लंबा सफर तय किया है। समय बदला, तकनीक बदली, लोगों की आदतें बदली, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो केवल कानों तक नहीं बल्कि दिलों तक पहुंचती हैं और पीढ़ियों की स्मृतियों में हमेशा जीवित रहती हैं। मेरे लिए रेडियो जापान हिंदी सेवा ऐसी ही एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। आज सोशल मीडिया पर लाखों वीडियो उपलब्ध हैं। लोग 10 सेकेंड, 30 सेकेंड या 50 सेकेंड के छोटे वीडियो देखकर ये मान लेते हैं कि उन्होंने किसी विषय को पूरी तरह समझ लिया, लेकिन क्या वास्तव में इतनी जल्दी किसी समाज, संस्कृति, इतिहास या मानवीय संवेदनाओं को समझा जा सकता है? शायद नहीं। रेडियो का संसार अलग था, वहाँ शब्दों में ठहराव था, आवाजों में अपनापन था और सुनने वालों के भीतर कल्पना की एक पूरी दुनिया जन्म लेती थी।
2: नीरज जी ने आगे लिखा है कि मुझे आज भी बचपन और युवावस्था के वे दिन याद आते हैं जब रात के सन्नाटे में शॉर्टवेव रेडियो सेट पर दूर देशों की आवाजें खोजा करते थे। कभी हल्की खराश, कभी तरंगों का कंपन और फिर अचानक एक साफ आवाज सुनाई देती थी, ये रेडियो जापान की हिंदी सेवा है। उस क्षण में मन में जो खुशी और रोमांच पैदा होता था उसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना संभव नहीं है। ऐसा लगता था जैसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई अपना व्यक्ति हमसे संवाद कर रहा हो।
1: पुराने समय को याद करते हुए वे आगे लिखते हैं, 70 और 80 के दशक में विकसित हुई श्रोता संस्कृति वास्तव में मानव संवाद की एक अनोखी परंपरा थी। उस समय रेडियो सुनना केवल मनोरंजन नहीं था बल्कि यह ज्ञान, संवेदना और विश्व मैत्री का माध्यम था। लोग कार्यक्रम सुनकर अपने विचार पत्रों के माध्यम से भेजते थे। जब किसी श्रोता का पत्र कार्यक्रम में पढ़ा जाता तो वो केवल एक व्यक्ति की आवाज नहीं रहती थी बल्कि हजारों श्रोताओं की सामूहिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व बन जाती थी।
2: नीरज जी पुराने और नए दौर के बीच अंतर पर लिखते हैं, आज के डिजिटल युग में शायद नई पीढ़ी उस अनुभव को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाएगी। आज सब कुछ बहुत तेज हो गया है, सूचना तेजी से आती है और उतनी ही तेजी से भुला भी दी जाती है, लेकिन रेडियो सुनने का अनुभव धैर्य सिखाता था। श्रोता ध्यान से सुनता था, कल्पना करता था, सोचता था और फिर अपनी प्रतिक्रिया लिखता था। यही प्रक्रिया व्यक्ति के भीतर संवेदनशीलता और गहराई पैदा करती थी। आज इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस दौर में भी जब NHK वर्ल्ड जापान से हिंदी सेवा की आवाज सुनाई देती है तो मन में एक अजीब सी आत्मीयता जाग उठती है। ऐसा महसूस होता है जैसे समय बदल गया हो, दुनिया बदल गई हो, लेकिन कुछ रिश्ते अब भी वैसे ही सच्चे और जीवित हैं।
1: नीरज जी, वाकई पुराने दौर की कई बातें अक्सर याद आती हैं, लेकिन समय के साथ कदम मिलाना भी तो जरूरी है।
2: जी, इसीलिए रेडियो के साथ ही वेबसाइट पर भी नए नए प्रयास किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अब लेते हैं ये पत्र पूर्व बर्धमान पश्चिम बंगाल से प्रदीप बसाक जी का। उन्हें नागारा नदी में जलकाग की मदद से मछली पकड़ने की करीब 1300 साल पुरानी जापानी परंपरा के बारे में फेसबुक पर डाली वीडियो बड़ी मजेदार लगी। लिखते हैं, ये कला केवल मछली पकड़ने की तकनीक नहीं बल्कि मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरे विश्वास, सहयोग और संवेदनशीलता का अनुपम उदाहरण है। जब रात्रि के अंधकार में नदी के शांत जल पर छोटी छोटी नौकाएं दीपों की रोशनी से जगमगा उठती हैं और प्रशिक्षित जलकाग अपने स्वामी के संकेत पर मछलियां पकड़ते हैं, तब वो दृश्य किसी जीवित लोककथा से कम नहीं लगता। ये परंपरा जापानी संस्कृति की उस आत्मा को दर्शाती है जहाँ आधुनिकता के बीच भी लोग अपनी जड़ों और इतिहास को सहेज कर रखते हैं।
1: वाकई बड़ी मजेदार वीडियो है और प्रदीप जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया इसका। और इसी वीडियो पर विश LM की फेसबुक पर टिप्पणी है, क्रेजी फेस्टिवल ऑफ जापान, जापान का मस्त उत्सव। वहीं पश्चिमी जापान के ह्योगो प्रिफेक्चर में मध्ययुगीन काल के प्रभावशाली परिवारों द्वारा निर्मित दो मकानों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किए जाने की रिपोर्ट पर अरुण कुमार जैन की फेसबुक टिप्पणी है, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए जितना जापान जागरूक है, काश बाकी सभी देश भी उसी तरह से अपने यहाँ की विरासतों के लिए जागरूक होते। भारत में ऐसे बहुत से मध्ययुगीन घर हैं जिन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्य से काम हो नहीं पा रहा है। इस दिशा में कुछ प्रयास किए गए हैं लेकिन वे नाकाफी हैं। आपकी रपट में वर्णित दोनों जापानी शहरों में जाने का मुझे मौका मिला था और जिस प्रकार से जापान अपने पुराने नगरों को आधुनिक रूप से विकसित करते हुए भी अपने अतीत को संजोया है, विशेष रूप से क्योतो में, वह अभिभूत करता है।
2: जापान में पहली बार निजी आवासों को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया जाएगा, जो वाकई अच्छी खबर है। अरुण जी, आपने सही कहा, भारत में भी अनेक हवेलियां और मकान हैं जिनका संरक्षण किया जाना चाहिए।
1: चलिए अब ऑटो रिक्शा पर वापस आते हैं
2: जी।
1: तो होरिकोशी जी, ये बताइए कि जब आप ऑटो रिक्शा से निकलती हैं तो आसपास के लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है?
0: मुझे लगता है कि ये लोगों से बातचीत शुरू करने का एक नया साधन बन गया है। अनजान लोग मुझसे बातें करते हैं, सवार करते हैं, हर कोई इस अनोखे वाहन को देखकर उत्साहित हो जाता है और ये सभी का ध्यान आकर्षित करता है। बहुत से लोग मेरे ऑटो को देखकर मुस्कुराते हैं और हर दिन इसकी सवारी करने में बहुत मज़ा आता है। अरे हाँ, जिस दिन ऑटो आया था उसके अगले दिन ही एक भारतीय दोस्त टोक्यो से इसकी सवारी करने यहाँ तक आया। उस समय जापान में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी तो बड़ी ही रोमांचक ड्राइव रही।
2: अच्छा, ऐसा हुआ। वैसे देखिए, भारत में केवल टैक्सी की तरह यानी सवारी बिठाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाया जाता है, लेकिन जापान में लोग इसे किस तरह इस्तेमाल करते हैं?
0: मैंने मोरी जी से इसके बारे में पूछा। मोरी जी बता रहे हैं कि अब लोग काम पर जाने के लिए या ऑफिस जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल शौक के लिए शनिवार या रविवार को चलाते हैं, यानी लोग तरह तरह से इसका आनंद ले रहे हैं।
1: अच्छा, ये बात है।
0: मोरी जी ये भी बता रहे थे कि ऑटो रिक्शा के पिछले हिस्से में छोटी सी रसोई बनाकर यानी ऑटो को किचन कार की तरह बनाने की मांग भी है। ताकि घूम घूम कर खाने पीने की चीजें बेची जा सके। इसके अलावा पीछे की सीट को और बड़ा करके सोने की जगह बनाने से कैंपिंग कार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रकार के ऑर्डर भी बढ़ रहे हैं।
2: वाह, क्या बात है, किचन कार और कैंपिंग कार। ऐसा लगता है कि लोग अपनी पसंद के अनुसार इसमें बदलाव करके इसका आनंद ले रहे हैं ना?
1: जी, मुझे याद आया कि हर साल योयोगी पार्क पे होने वाला नमस्ते इंडिया में एक चाय की दुकान लगती है, याद है ना?
2: हाँ हाँ।
1: जो वास्तव में ऑटो रिक्शा किचन कार है, वो भी काफी अनोखा प्रयास है,
2: है ना? हुँ।
0: जी हाँ, बिल्कुल। इससे आप लोगों का ध्यान खींच सकते हैं और कारोबारी उपयोग के लिए एकदम सही है। बेशक अपने परिवार को स्टेशन लाने ले जाने या अकेले पास में खरीदारी करने के लिए भी इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। ये सच में बहुत सुविधाजनक है। मुझे लगता है कि ये जापान की जीवन शैली के लिए एकदम सही वाहन है। हाल में जापान में ईवी ऑटो रिक्शा बेचने वाली कंपनियों की संख्या बढ़ रही है। पर्यटन स्थलों या फिर स्थानीय सरकारों द्वारा इसे खरीदे जाने के मामले भी सामने आए हैं। रखरखाव की कम लागत, छोटा आकार और पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण मुझे लगता है कि ये आगे भी लोकप्रिय वाहन के रूप में उभर कर आएगा।
1: जी, मुझे भी यही लगता है कि ये इतना सुविधाजनक है कि टोक्यो के लिए मैं भी इसे खरीद लूं, पर पता नहीं है मैं इसे टोक्यो में चला सकती हूं या नहीं।
2: जी हाँ, तो आप देखिए, कार्यक्रम के अंत में आपसे विदा लेते हैं इस गीत के साथ, जो आपको ऑटो रिक्शा में सवार होकर बाहर घूमने जाने के लिए विवश कर सकता है। गीत है इन दोनों माचियो जोनी नोत से, यानी भारत की नगरी में घूमे हाथी पर होकर सवार। गाय है रोकुमोन सेन ने।